छोड़ सकल स्यान पाव मिल साद त्याग गुमान, छोड़ सकल स्यान पाव मिल साद त्याग गुमान, अवर

बिन हर गुर किन पत पाई है। कली काल मह एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने ना पाखी। मन मुख कूड़ वरतै वरतारा, बिन सतगुर

सुख दुख ही तय अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा श्याम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमत लेहो परम पद पाई, नानक गुर भरम चुकाया। गुरमत

पूर्क मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सों गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्दी।

पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द हर नाम चित लाए। मन तन हर रविया कट अंतर, मन भीनै भगत सलाहाए। मेरा प्रभु साचा असुर संहारण।

मत बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएंदा। काया विच तोटा काया विच लाहा,

सतगुर बाजहु संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रहै दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उठ है न मूले न आव है न जाही, निज घर वासा पाया। काया सुध है शब्द विचार है।

गुण निदान मंतन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

आदि मध अंत प्रवरव्या कृष्ण बुझी परम अंगनां गुर परमेश्वर गुर गोविंद गुर कर्ता गुर सद बख्शंद गुर जप जा।

अमोग दर्शन आजूनी संभव, अकाल मूर्त जिस कदे नाही खाओ। अविनाशी अवगत अगोचर, अविनाशी अवगत अगोचर, सब सब किछ तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वास

खराव शराशरयत लेकम्मा वहो त्रिकत तर्क खोज टोला वहो मारफत मन मार हो अबदाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द

गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया रतत किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटा का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस गाया।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाए लोएन रत्ते लोएनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूनड़ी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग में ना

हर अगम अगाधा निःचल नाम निदान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा सच

सादिन उस्तत निंदा दो विवर्जित तजहो मान अवधाना उस्तत निंदा दो विवर्जित तजहो मान अभिमान लोहा कंचन सम कर जान है ते मूर्त भगवान।

बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी, राम नाम बिन उर्ज मरे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। दंड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन

मुख जाता, से जग मह काहे आया, गुर की सेवा कदे न कीनी, बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी,

बुझाए, संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग

जिसका तुम हर राख्या पावे, तिसके नेड़े कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तें भरपूर, तू जल थल महियल।

भाव तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांठ गंगा जल गुर गोविंद नाम

अंत अपूछे, राज हमारा सद ही निःचल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमारी कर कर

ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरहो दुख भंजना रहाओ। जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रहे।

मेरी सखी सहेली सुनो पाए, मेरा पिर री सालू संग साए। ओ अलख ना लखिए कहो काए, गुर संग दिखायो राम राय। मिल सखी सहेली।

गुरमत खोज परे तब पकरे, तनसाव तरास उबरया। पाखंड भरम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख

ओडा कूप गोज खिन काढ़ जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ त्यो सतगुर वस्त लहाई है। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ पुन फल।

तेरा सतगुरु सुख सहज से ती कर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कह आया बसंत महला पंजवां हिंडोल।

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती सर धोवन चाली लाडली रहाओ तो भी तो वह बिरह बिराता

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

सहज तुन उपजै मन साचै निवलाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाणे शब्द मरै तां सब किछ सूजै अनदिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूझै होर कह

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों। आन दिन भगत सुहावी मुक्त भय गुरदर्श दिखाया। जोग जोग

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

ताई नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु तूर दे हर पार लंघाई मलार महला चौथा तिस जान को हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जगत तरावै रहाउ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अज्ञानी अंधले,

अनक बार ब्रह्म है बहुजोनी एक न काहू धरते रहाओ। त्याग स्वामी आन कौ चितवत मूड मुग्ध खल खरते कागर नाव लंग है कत सागर कागर नाव लंग है कत सागर वृथा कथत हम तरते। शिव विरंच असुर सुर जेते काल

कान हर बरस सगल जग छाया, भय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी,

पद त्यो धारण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरनाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवां।

मुख गुरमुख हर समझावणी। सब बोलहो राम रमो श्री राम रमो, जित दालद दुख भुख सब लह जावणी। श्लोक महला चौथा।

सार्थक है। साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नानक है। मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरदंत जरुआ।

पुर तहारं कुल है समूह सगल उधारं बड़ भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह न है।

सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निध बस है जिस सदा कर। पर त्रै रावण जाहे से ताला जी है नित प्रत हिर है पर दर्ब शिदर कत ढाकी है।

मनोरथ कोई ना पूरे चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कत है न

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰੇ ਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

धर्म है। सब कल उधरे एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। सवैये

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मुन जन गाव है अचल छला। गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजस

जी गुर अमर भनिज नैन ता परस के अथ नैन गुर अमर पिखिज श्रवण ता परस के अथ श्रवण गुर अमर सुनिज।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निर्भो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रमत जहो।